0: लेट नहीं होना
1: नहीं होना लेट नहीं होना
0: लेट नहीं होना
2: थैंक यू I just met a girl and she's from Woolloomoolloowanda. I can dance and she can sing and we can rock the whole night longer.